कहत सदा सेव निरंकार का चिन्हत नह पेव आप अपनी बुद्ध हजीती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा ना जाय पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सरूपा रंक पयो राव कही भूपा

दोहरा जब आए सो प्रभु को पयो जन्म तरा जग आए। अब मैं कथा सुन छिपते सबू कथ सुनाए का बाच दोहरा।

हर संति एह बिद जाती। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु साहब जीओ। सोठ महला पंजवा। गुरका शब्द कवारे, चौकी चौगिर्द हमारे।

पूरन पुरख विधाता रहाउ नानक प्रभु अविनाशी ताकि से न बिकी जासी अंध करे तेरे दासा जा पूर्ण होई।

पुरख धार्मिकता जौन आदि सेख देश और न पेश जा कर रूप रेख न राग जतर ततर दिशा विशा हो फैल्यो अनुराग नाम काम विहीन पेखत तम हु न जाए सर्व मानु सर्वत्र मानु सदैव मानता ही एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेल अंत को पर एक देव भेव न जान ही जिह वेद और कुतेब रूप रंग न जात पान सो जानी केह जेब तात मात न जात जा कर जन्म मरण बिहीन चक्र बकर फिराई चतर चक मानी पुरतीन लोक चौदह के बिख जग जाप जह जाप आदि देव अनाद मूर्त थाप्यो सब जि थाप परम रूप अपनीत मूर्त पूर्ण पुरख पारु सर्व सवृत्यो सजियम पव गर्ण पंजन हारु कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म धाम सु परम रहत भूत लख अपेस अंग रग नरंग जा कह जात पात न नाम गर्व गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अनुस्थित एक कवदूत गर्भ गंजन सरपंजन आदि रूप अशूत अंग हीन अभंग नात्म एक पुरुख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रत पार सर्व गंता सर्व हंता सर्व त्यन पेख सर्व शास्त्र न जान ही जेह रूप रंग अर लेख परम वेद प्राण जा कहने भाकत नित कोट सिमरत प्राण शास्त्र न आवई वो चित मद भार छंद प्रसाद गुण गण उदार महिमा पर आसन भंग पानांगन भव प्रकाश निस्त्र नस आजन बाहु साहन साहु राजन राज भान भान देवन देव महान इंद्रन इंद्र बालन बाल रंग कर रंग काल अन काल अनपूत अंग अब भंग गत मित पर गुण गण उदार मोन गण प्रणाम निर्भय काम आत दुत प्रचंड मित गत अखंड आलिसा त्रम आलिसा कर्म दिशा त्रम सर्व प्रनाड अंडन बाडे चाचरी छंद प्रसाद गोबिंद मकंदे उदारी अपारी हरियं करियं करी मुरही हरियं करिंग नामे अकामे भुजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परम न पितर न कर्म न काय अजन्म अजाय न चित्र न मित्र पर पवित्र प्रतिस अदिश अदृश अकृश भगवती छंद त्व प्रसाद कातते के अच्छे जिदेश के अपिज पेश के अगंज कर्म के अपंज भरम के अभिज लोक के अदित सुख के अवदूत वर्ण के विभूत करण के राजन प्रभ के त्रमंग तुझ के शोक वर्ण के सर्वा भरण के जगतंग कृतिय के छतरंग छत्रिय के ब्रह्मंग स्वरूप के अनुप अनुप के आद अदेव के आप अपेव के चतरंग बहीन के एक अधीन के रोजी रजा कर रहीमा रेहा कह के पाक बे में के गैबुल गैबे के अफुल गुनाह के साहन साहें के कारण कुनिंद है के रोजी दिहंद है के राजक रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र माने है के सर्वत्र दाने है के सर्वत्र गौने है के सर्वत्र पौने के सर्वत्र दिशाए के सर्वत्र पेशाए के सर्वत्र राजाए के सर्वत्र साजाए के सर्वत्र दीना है के सर्वत्र लीना है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र दिशा है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजा है के सर्वत्र राजा के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पुख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र दिशा है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र माने के सर्वत्र दाने के सर्वत्र जापे के सर्वत्र माने सदैव प्रधान है के सर्वत्र जापे के सर्वत्र थाप्य के सर्वत्र पाने के सर्वत्र माने के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र
के सर्वं के साह सर्वं कली मैं के परम अफी मैं के आकुल अलामे के साहब कला मैं को सुनल वजू है तमाम रुजू है अन हमेश्वर सलाम मैं सलीकत मदा मैं गनी मुल सिकस्ता गरीबल प्रस्ता है बुलंदल मकाना जिमिन जमाना तमी जुल तमा मैं रुजुल नदाना हरिफल जी मैं रजा के जकीना अनेकुल तरंग है भेद है भंग है जीजल नवाजे गरीब खराज निरुक्त स्वरूप है त्रम भूत है पर भुगत प्रभ सुजुग सुधा हंसदा रूप है भेदी अनूप है समस्त उपराज सुधा सर्व साज है समस्त सलाम है सदैव खामंड बात रूप है अगाध हनुप है ओ अंग आद रूप है नास रूप है अनंघी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्ग त्रिभादे अगंजे अगाधे शुभम सुरभागे सो सर्व अनुरागे त्रिभुगत स्वरूप है अचिज है छूत है कि नरक प्रणस है पृथ्वी प्रवास है निरुक्त प्रभ है सदैव सदा है मैं भुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरुक्त सदा है मैं भुगत प्रभ है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है भेख है अलेख है पर मैं करम नाद जुगाद अजय है बह है भूतें तूतें अनास है दास है धंद है बंद है भगत है बरक्त है अनास है प्रकाश है नचिंत सुनिंत अलिख है देख है अलेख है भीख है ट है ग है सम है गम है नील है नाद है अनित है सुनित है जात है जाद है चरपट छंद प्रसाद सर्वंगता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंगता सर्वंगता सर्वंगकर्ता सर्वंग प्राणु सर्वंग त्राणु सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्तां निशाबल छंद त्वय प्रसाद नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाथे सदा सर्वसाथी अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न

जियस गोविंद दास तुहारो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु, मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती, मन बजिया वधाइया। राग रतन परवार परि अंग, शब्द गावण आई अंग, शब्दों ता गावो हरि के राग, मन जनी वसाया। कह नानक के आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया।

जुग जुग फेर बटाइए ज्ञानी बुझेता है। साजुगरा संतोष का धर्म ग्रथवा त्रेतर जत का जोर ग्रथवा।